तुदविन सिद्धि किनै न पाइया, कर्म मिलै नाहीं ठाक रहाइया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा।

पहला। आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खा।

गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत

सतगुर शरण संगत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत।

शैल पत्थर मह जंत उपाय ताकार जिक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया।

सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाओ करिया। ऊडे ऊडावे सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी, हर सच्चे सिर जनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक पुरख समाना। एक दाते एक पेहारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी, तिन का भाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहुसिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता।

तू आद पुरख अपरम पर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई, तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सोई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा।

गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा, जप तप संयम

खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहु उबारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहु बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहु उबारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहु बचाई। सुवैया

एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहू सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड कै गहो तुहारू द्वार बाहे गहे की लाज अस

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों ता गाव हो हरी केरा।

सुख कने कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूतर सारी तुम ते हो वे सो आगे आकाश।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाच भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याए फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दयावता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशी ने पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार त्यंतर के खर्चा से बोलो जी वाहे गुरु। गरीबन वाच आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटिया जपिया जपिया जिन्हें नाम जपिया वन चकिया देख चलाई ते वाही देख निड़ किया तेना प्यार सत्यार नहीं कमाई दते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सही दिते बंद बंद कटवाए कोबरिया लवाइया चरखड़िया चले आने न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसे तरीके से सत्संग संग निभाया तिना भी कमाई दते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त गुरुद्वार दते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। नाम किताब है यद आमण का सद का सर्व सुख है जहां जहां गुरु खालसा साहब दर्शरियाज देवते की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोरबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे चुप चुक अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत तुचे मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु जी बनवाए पंथ सदा शाही दता जियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब जोर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप पंथ छोड़े दर्शन दात सेवा संभाल दान अपने खालसा जी बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया आसरे गुरु धन धन गुरु ने दार पिता जी हो आपके चरण कामना दरदास में जान बख्शी दरदार जी आपके चरण पितर गुरबाणी सुखमणी साहब संपूर्ण पाठ दिता उपरंत संध्या समा जान के आपके चरण सोधदार रह रात शब्द पाठ कितने कृपा करो होइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सत्खंड पुराण करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय प्रसानी कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध पितर बाणी टारी मन बुद्धि बख्शिश करो महाराज इस खुशी में आप दी बख्शियां दाता पिछले क्राफ शादी देगा तैयार कर हाजदार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संघ की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी दतार जी कृपा करो आप जी बख्शिया दाता जो नगर टुट सवार प्रबंध करनी दतार आपके चरणा सेवा करते सारे टारी संघा संघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो सदा ही सदरा अपने चरण सेवा दी भावना में कृपालता करो गरीबन वास जी कृपा करो अमृत पेड़ तो लैके दर्ज आई साफ संकत जी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ सांगता का दर्ज तेरे पर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गरीबन वास बेअंत प्रारण बेअंत माया बेअंत रास्ता आपके नगर के गांधी मंदिरों में साधु प्रवान करो कमाइया सफल करो शुभकामना पूर्ण दतार सब संगत शुभकामना पूजा करो कमाइया सफल करो जी दतार कृपा करो जीवन वास जीओ सच्चे पातशाह दर के सरदार भाई जी जगदीप सिंह अपने पुत्रे काका नसीब सिंह गरेवाल के जन्म की खुशी हुई दतार पिता जी आपके चरना धनवाद करते हैं शुक्रिया करते एक सिख दादा आपके चरना पेटा प्रवान करो बख्श कर गरीब नवाज काका नसीब सिंह पोतरे तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्म देश कम दाग्याकार बख्श कर दतार बच्चे ने गुरसिखी दाज बख्शिश करके उच्ची विद्या दाज बख्शिश करनी सारे परिवार में तंद सुख शांति चढ़ कला करके युवाज परिवार की सदा शुभकामना पूरी करनिया सदा सेवा अपने चरण सेवा की दाज बख्शिश कर दी तार कृपा करो सेवा कमाइया सबल कर दाते लाजपत रखो जी। गुरु जी महाराज मनदीप सिंह परिवार की चढ़ कला वास्ते बेहद मैं लगा देने प्रवान करो जी महाराज स्वर्गवासी सरदार गुरदर्शन सिंह जी बरसी के परिवार वालों एक सौ हाजर प्रवान करो बख्शिश करो भाई सुखदर्शन सिंह समाज जग की यात्रा करता हुआ भूलों चुके माही बख्शो उन्हें गोड़े गन्ना चार जात मन झरना भी मार बख्शो ठंड बख्शो आगम से बचा के परिवार को बच्चों रिश्तेदारों भाने मन से बाल ताकत बख्शिश करो जी तार कृपा करो परिवार में सुख रखो तीर्थ राज बख्शिश कर उच्च आत्म शांति बख्शो जी। गुरु जी महाराज मेहर करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टहरी सिंह सिंगणियों तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करो बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भान बख्शिश पालता करो तार कृपा करो जी। गुरु जी महाराज दूर तरह
ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਸਰਮਕਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਹਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਘੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪੇਦਰ ਗੁਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ਰ ਕਬਰੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨ ਦੁਰਾਜ ਬਣਾਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

सेवा पालन करने की प्रणाम खिमा पावन कार्य भाई साहब भाई नवनीत सिंह पासों पावन पवित्र चल रही लड़ीवार कथा सरवण करी जी बुलाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी धन गुरु नानक।

गुण गावा दिन रात, नानक चाऊ एहो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, दखणे महला पंजवा, गहडड़ा त्रिण छाया, गाफल जले ओह पाहे, जिना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे। गहडड़ा त्रिण छाया, गाफल जले ओह पाहे, जिना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे। महला पंजवां,

नित फिर है परमाइया। हाठा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया। शिव अगै शक्ति हारिया एवै हर भाइया। एक विचो ही तुद रखिया जो सत संग मिलाइया। जल विचों बिंब उठा लेओ जल माहे समाइया। एक विचो ही तुद रखिया जो सत संग मिलाइया। जल विचों

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडहंस महला पंजवा। तू जाना है ता कोई जाने, तेरा दिया नाम बखाने। तू अचरज कुदरत तेरी बस बिस्मा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी ने अपार कृपा बख्शिश रहमत कीती है। अमृत वेले गुरुदेव जी ने पावन पवित्र तख्तां ते प्रकाशमान हो करके दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन, नदरो नदरी निहाल कीता है। पावन पवित्र श्री मुखवाक सतगुरु दत्तार पिता महाराज ने बख्शिश कीते हन, जो वडहंस राग विच्चों पंचम पातशाह धन गुरु अर्जुन देव दातार पिता जी सतगुरां दे अमृत मुखार बिन तो उचारण यह पावन शब्द गुरदेव जी दे पावन अंग 563 अते 64 उपर सुभायमान है। गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव कृपा करदे ने कि ऐ परमेश्वर ऐ वाहिगुरु तू आप जिस जीव ते बख्शिश करदा है, रहमत करदा है, जिस नूं सोझी बख्शिश करदा है, उही तेरे नाम नूं जपदा है, वखाणदा है, आखदा है। जे तेरे मन अंदर किसे नूं अपना आपा जानाण दी, अपना आपा वखाण दी भावना है, रहमत है, तां ही कोई तेनूं जाण सकदा है, तेनूं वखाण सकदा है। अन्यथा तेरी कुदरत बहुत बिस्म है, बिस्मादी है, तेरा वर्तारा तेरा विस्थार बहुत वड्डा है, कोई तेरे बाबत रंचक मात्र भी जान नहीं सकता। जिस ते तू आप त्रुट के कृपा कर दे, वो तेरी कीर्ति करदा है, तेरी कुदरत दी सिफत सलाह करदा है, तेरे नाम विच रंगिया जांदा है, कि तेरी बख्शिश की बदौलत है, तेरी रहमत की बदौलत है। मेरे दास ते भी अपनी ए बख्शिश ए रहमत कर कि मैं भी तेरे नाम नू वखानन जोगा, आखण जोगा, जपण जोगा हो जा। सतगुरु दत्तार पिता जी कृपा करन सानू भी अपने दरों करो नाम दान, गुरसिक्खी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके गरीब जी नवाजन जी भुलां चुकां दी खिमा। आओ सतगुरां दी अमृत बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ हुण संगती रूप विच होणगे। प्यार सहित आप जिया ने हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम

0: गौड़ी सुखमनी महला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो
1: कल क्लेश तन माहे मिटावो
0: सिमरौ जास बिसंबर एक
1: नाम जपत अगंत

0: की रसना,
1: नानक जन का दासन दसना,
0: प्रभु को सिमरह से धनवंते,
1: प्रभु को सिमरह से पतवंते,
0: प्रभु को सिमरह से जन परवान,
1: प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान,
0: प्रभु को सिमरह से बे मोहताजे,
1: प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे,
0: प्रभु को सिमरह से सुखवासी,
1: प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी,
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला,
1: नानक जन की मंगर वाला,
0: प्रभु को सिमरह से पर उपकारी,
1: प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी,
0: प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे,
1: प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे,
0: प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता,
1: प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता,
0: प्रभु को सिमरह तिन अनदिक नेरे,
1: प्रभु को सिमरह वसै हर नेरे,
0: संत कृपा ते अन दिन जाग,
1: नानक सिमरन पूरा भाग,
0: प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे,
1: प्रभु कै सिमरन कबहू न चूरे,
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभु कै सिमरन सहज समानी,
0: प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन,
1: प्रभु कै सिमरन कमल विगासन,
0: प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार,
1: सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार,
0: सिमरह से जन जिन को प्रभु मया,
1: नानक तिन जन सरणी पया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग वेद उपाए,
0: हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते,
1: हर सिमरन नीच चौकुंठ जाते,
0: हर सिमरन धारी सब धरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन की सगल अक

0: श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया
0: सगल उद्दम है उद्दम पला
1: हर का नाम जपहु जी सदा
0: सगल वाणी में अमृत वाणी
1: हर को जासुन रसन बखानी
0: सगल तान तेयो उत्तम तान
1: नानक जी कट वसै।

0: एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै,
1: बसलेहो तो नानक सीजै।
0: ए प्रसाद तारु पर सुख बसै,
1: सुत प्रात मीत बंता संगसै।
0: ए प्रसाद पी वह शीतल जला,
1: सुखदाई पवन पावक अमला।
0: ए प्रसाद भोगै सब रसा,
1: सगल समग्री संग साथ बसा।
0: दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना,
1: जिसह त्याग अवर संग।

0: अश्वदी
1: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
0: इस ठाकुर को रख मन माहे
1: जय प्रसाद सुगंध तन लाव है
0: इसको सिमरत परम गत पाव है
1: जय प्रसाद बस है सुख मंदर
0: सहते आए सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा त्याये त्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हराव है
0: सह त्यागत अवर लुभाव है
1: जय प्रसाद सुख से जसोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस गा विजय
1: जय प्रसाद तुझ सबको मन
0: मुख ताको जस रसन बखाना
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
1: प्रभ जी जपत दरगह मान भाव है
0: नानक पद सीती कर जाव है
1: जय प्रसाद आरोग कंचन देही
0: शिव लाभ तिस राम स्नेही
1: जय प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मान सुख पा वह हर हर जस कहत
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके
0: मन सरणी पार ठाकुर प्रभ ताके
1: जय प्रसाद तुझको न पहुँचे
0: मन सास सास सिमर हो प्रभ ऊचे
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह
0: नानक ताकी भगत करे
1: जय प्रसाद आपूखन पहरी जय
0: मन ते सिमरत क्यों आलस की जय
1: जय प्रसाद अश्व हस्त असवारी
0: मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी
1: जय प्रसाद भाग मिलख तना
0: राख पुरो प्रभ अपने मना
1: जिन तेरी मनवंत बनाई
0: उठत बैठत सदत सहते आई
1: सहते आई जो एक अलख है
0: इहा उहा नानक तेरी रखे
1: जय प्रसाद करह पुन बोधान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: इस प्रभ को साथ साथ चितारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।

0: संग होए सब की रेन,
1: साधक संग मनोहर बैन,
0: साधक संग न कतहु तावै,
1: सत्संग स्थित मन भावै,
0: साधक संग माया ते भिन्न,
1: साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न।

0: नानक साध प्रभु बने आई।
1: साध के संग न कब हुतावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बस्त गुचर लह,
0: साधु के संग अजर सह।
1: साध के संग बसे थान उचे,
0: साधु के संग महल पहुचे।
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु के कुर्बान।
1: साध के संग सब कुल उदार,
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार।
1: साधु के संग सो धन पावे।

0: जैसे बैल लगा जलाज्ञानी
1: के मनो प्रगास
0: जैसे तारू पर आकाश
1: ज्ञानी के मित्र सतर समा

0: ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत
1: ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: दान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए चिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी भाई
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी।

0: देखे नेत्र
1: साध की टहल संत संग हित
0: करन न सुने काहू की निंदा
1: सब ते जाने आप उसको मंदा
0: गुर प्रसाद बिखया पर हर
1: मन की बासना मन ते टरे
0: इंद्री जित पंच रोग ते रहत
1: नानक कोट मध्य को ऐसा परसो
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
1: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
0: कर्म करत होवे नेह कर्म
1: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बच
1: केवल भगत कीर्तन संग रच
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे
1: नानको वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्याग दुष्ट का संग
0: मन ते बिनसै सगला परम
1: कर पूजै सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: इस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीद
1: मन तने अर्पे विष्ण परीत
0: हर के चरण हृदय बसावे
1: नान कैसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन पर बोध
1: राम नाम आत्म शुद्ध
0: राम नाम सार रस पीवे
1: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: सो पंडित फिर जो न आवे
0: मेर प्राण सिमरत बुझे मूल
1: सुखम मैं जाने स्थूल
0: वरना को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सदा आदेश।

0: पास प्रेत मुक्त पात्र कौतार है।
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम।
1: काहू जुगत के तय न पाई है धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।
1: जिसके मन बाहर ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नजरी आया।
0: दास दसंतन पाए।

0: जीवन मुक्त सो कहावे,
1: ऐसा हरख तैसा उस सोग,
0: सदा आनंद तै नहीं बेयोग,
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: ऐसा अमृत तैसी बिख खाटी,
1: ऐसा मान तैसा अब महान,
0: ऐसा रंक तैसा राजान,
1: जो बरदाए साई जुगत,
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त,
1: हर ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ,
1: आपे करन करा बन जोग,
0: प्रभावै सोई फुन होग,
1: पसरियो आप होए अनंत तरंग,
0: ल

0: कारु अष्टपदी कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट पै तीर्थवासी
1: कई कोट वन प्रमय उदासी।

0: अंत न पावह।
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपण कठोर,
0: कई कोट अपेग आत्म निकोर,
1: कई कोट पर दर्व को हिर है,
0: कई कोट पर दुख न कर है,
1: कई कोट माया श्रम माही,
0: कई कोट प्रदेश परमाहे,
1: जित जित लाभ तित तित लगना,
0: नानक करते की जान करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प पाए,
0: कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट ससियर सूर्न खेतर,
0: कई कोट देव दान इंद्र से छत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत तार,
0: नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस्ताम सातक,
0: कई कोट वेद प्राण सिमृतार शास्त्र,
1: कई कोट कीर्तन समुद्र,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट किए चिर जीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे,
1: कई कोट जख की नर पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाज,
1: सब ते नेरे सब हुते दूर,
0: नानक आप अलिप्त रहे आभार भूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक सुर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म जीव है मर है,
0: कई कोट बहुत जो नींद रहे,
1: कई कोट बैठत ही खाहे,
0: कई कोट कलह तक पाहे,
1: कई कोट किए तनवंत,
0: कई कोट माया मह चिंत,
1: जह जह पाणा तह तह राखे,
0: नानक सब किस प्रभु कै हथे,
1: कई कोट

0: तब लग गर्भ जोन मह फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लग निचल नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: कब कृपा ते बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
1: सहस खटे लख कोट तावे
0: तृप्त न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विख्या के करे
0: नह तृप्तावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: अपन मनोरथ वृथे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: बड़ भागी किसे प्राप्त हो।

0: प्रसाद किने वखियानी
1: सच सच सच सब किन्ना
0: कोट मध्ये किने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अति सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: काट काट सुनी श्रवण बखियानी।

0: चारु अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटै
1: संत के दुखन जमते नहीं चुकै
0: संत के दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में बाए
0: संत के दुखन मत हुए मलीन
1: संत के दुखन सो बातें
0: संत के हते को रखे न कोए
1: संत के दुखन तान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जी करे
1: नानक संत संग निंदक भी तर
0: संत के दुखन ते मुख पवै
1: संतन के दुखन काग ज्यो लवै
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिगद जोन गिरमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
1: संत के दुखन सब को जलै
0: संत के दुखन ते सब जाए
1: संत के दुखन नीच नी जाए
0: संत दुखी का ताव को नाहे
1: नानक संत पावे ता ओई भी गत पाए
0: संत का निंदक महा अत ताई
2: संत का निंदक

0: को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा वियोग,
0: संत के निंदा दुख में दुख,
1: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख,
0: संत का दुखी सदा पवित्र,
1: संत का दुखी किसी का नहीं मित्र,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्यागे,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा भिखारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे,
1: संत की दुख न सुख ते तर,
0: संत दुखी का थाओ, संत दुखे दुखी को नाही ठाओ,
1: नानक संत भावे ता लय मिलाए,
0: संत का दुखी अद बीच ते टूटे,
1: संत का दुखी कित काज न पूछे,
0: संत के दुखी को ध्यान फरमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सास बिना मृतक की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाहे,
1: अपन बीज आपे काहे,
0: संत के दुखी कवर न रखन हार,
1: नानक संत भावे ता लय वार,
0: संत का दुखी यो बिल लाए,
1: यो जल भी हून मछली धड़ बढ़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: यो भाव के ईंधन नहीं प्राप्त,
0: संत का दुखी छुटे केला,
1: यो बुहार दिल खेत माहे दोहेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सदमितया कहत,
0: किरत निंदक का तुर ही पया,
1: नानक जो तिस भावे सोई थया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दर्गह मिल सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहताई है,
1: संत का दुखी न मरे न जीवाई है,
0: संत के दुखी की पुजे न आसा,
1: संत का दुखी उठ चले न रासा,
0: संत का दुख न त्रिष्ट कोई,
1: जैसा भाव है तैसा कोई होए,
0: वह कीर्त न मिटे कोई,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब घट तिसके उकरने हा।

0: क्यों गुरु का शब्द मने अस्थम मन
1: ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरह
0: प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रगास
0: गुरु दर्शन देख मन हुए विगास
1: ज्यो महाउद्यान में मार्ग पावे
0: क्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: संतन की बातचीत हो
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूरख काहे विलाई है
0: पूर्व लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभु देवन हार
0: अवर त्याग तू तिसे चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: भूला काहे फिरे अजान
1: कौन बस्त आई तेरा संग
0: लपट रहो रस लो भी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माहे
0: नानक पद छेती कर जाहे
1: जिस वखर को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: तज अभिमान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तोल
1: लाद खेप संत

0: मंत्र न जाने होर
1: अनद रूप मंगल सद जाकै
0: सर्व थोक सुनिए कर ताकै
1: राज में राज जोग में जोगी
0: तप में तपीसर गृहस्थ में भोगी
1: त्याई त्याई भगत सुख पाया
0: नानक।

0: नाम के धारी प्रिया सब पवन
1: नाम के संग उदरे सुन श्रवन
0: कर कृपा जिस आपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जा का सत स्थान
1: पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत

0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: सेवक के मन प्रती
0: ठाकुर के सेवक के निर्मल
1: को सेवक जन संग
0: का सेवक नाम के रंग
1: सेवक को प्रपाल।

0: अपने सेवक की सर पर रख,
1: अपने दास को दे बढ़ाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आपत रख,
0: ताकि गत में तो कोई न रख,
1: के सेवकों को न पूछे,
0: रब के सेवक पूछे,
1: अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक जिस प्रगटाया,
1: गिरी में कर रखे,
0: पशु करे पर गुट लाख,
1: का शासन काट आप,
2: ताकु रख दे कर हाथ,
1: जतन करत बात,
2: इसके कर्तव्य ते जात,
1: मारन रखे वरना कोए,
0: सर्व जिया का रखा सोए,
1: वाहे सोच करे रे प्राणी,
0: जप नानक का लख विधानी,
1: बारंबार बार प्रभु जपिए,
0: अमृत मन तन जपिए,
1: अमृत अंजन गुण पाया,

0: सतगुरु शक्ति कृपा प्रदपाल
1: शिव को गुरु सदा दयाल
0: सिख की गुर दुर्मत मल हिरा
1: गुर बचनी हर नाम उचरे
0: सतगुरु सिख के बंधन काटे
1: गुरु का सिख विकार ते हटे
0: सतगुरु सिख को नाम धन दे
1: गुरु का सिख वड भागी
0: सतगुरु सिख का हल

0: ब्रह्म
1: कह आप नहीं कछ परम
0: सहस्यान मलया न जाइए
1: नान कैसा गुर बड़ भागी पाइये
0: सबल दर्शन बेगत बनीत
1: परसत चरण गत निर्मल रीत
0: पेड़ संग राम गुण गर्वे
1: पार ब्रह्म की दर गह गवे
0: सुनकर वचन कर्ण आगने
1: मन संतोखा तुम पते आने
0: पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र
1: अमृत दृष्ट पे खै हुए संत
0: गुण बेंद कीमत नहीं पाए
1: नानक जिस पावै तिस लय मिलाए
0: नेवा एक उस्तत अनेक
1: सत पुरख पूर्ण बबेक
0: राहु बोल न पहुंच प्राणी
1: अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
0: निराहार निर्वाह सुबदाय
1: की कीमत के नै न पाई
0: ननक भगत बंदन नित कर
1: चरण कमल हृदय सिमर
0: सदवलयारी सतगुरे अपने
1: नानक जिस पर साद है सा प्रभ जपने
0: एहो हर रस बावे जन कोए
1: अमृत पीवे अमर सो होए
0: उस पुरख का नाही कदे विनाश
1: जाकै मन प्रगटे गुणतास
0: आठ पहर हर का नाम ले
1: सच उपदेशे वको दे
0: मोह माया के संग न लेप
1: मन में रखे हर हर एक
0: अंधकार दीपक परगासे
1: नानक परम मोह दुख तहते नासे
0: सप्त माहे ठांड वरताई
1: भया दुख नाठे पाई
0: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
1: साधु के पूर्ण उपदेशे
0: हो चुका निर्भव होए वसे
1: सगल व्याध मन ते खै नसे
0: जिसका साथ इन कृपा धारी
1: साध संग जपना मुरारी
0: चित पाई चुके परम गवन
1: सुन नानक हर हर जस श्रवण
0: निर्गुण आप सरगुण भी ओही
1: कला धार जिन सगली मोही
0: अपने चित प्रभ आप बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: हर बिंदु जाना ही कोए
1: सर्व निरंतर एक को सोए
0: ओत पोत रव्या।

0: भगवंत
1: संत जन का निर्मल मंत
0: एक आस रखो मन माही
1: रोग नानक मिल जाए
0: जिस तन को चार कुंट उठता वह
1: तो तन सेवा ते भावे
0: जिस सुख को नित बाछे मीत
1: सुख साधु संग मीत
0: जिस शोभा को करह भली करनी
1: सा शोभा बजहर की सब

0: जीवन जिया
1: को विसरजे अगन में राखे
0: गुरु प्रसाद को फिर ला लाखे
1: को विसरजे विकते काटे
0: जन्म जन्म का टूटा गाटे
1: गुरु पूरे सते बजाया
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो यो काम
0: आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर

0: प्राण आधार भगत पाए लावे मन हीत
1: निर्गुण यार नीच जान
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्वकुंड मुक्त मुख पाए
0: एक निमक हर के गुण गाए
1: राज भोग बढ़ियाई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: भोजन का प्रसंगीत
0: रचना जपती हर हर नीत
1: सो करनी सो बातन मंत
0: हृदय बसे।

0: जब अकार एहो कशन दृष्टिता
1: आप गुण तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध किस संग कमात
0: जब इसका मरण चहन न जापत
1: तब हरक सो कह किस व्याप्त
0: जब अपनो आप पार ब्रह्म
1: तब मोह कहा किस होवत परम
0: अपन खेल आप भरतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
0: जब एक है रागम अपार
1: तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए
1: तब शिव शक्त कहो कित ठाए
0: जब आप है आप अपनी ज्योतर है
1: तब कवन निडार कवन कत डरे
0: अपन चल तो आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुख आसन अपन आसन
1: रह जन्म मरण कहो कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस हुए
0: जब अवगत अगोचर प्रवेका
1: तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
1: तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे
0: अपन आप ही अचरजा
1: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा
0: जह निर्मल पुरख पत होता
1: तह बिन मैल कहो हो क्या तोता
0: जह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन को मान कौन अभिमान
0: यह स्वरूप केवल जगदीश
1: तह चल छिद्र लगत कहो कीस
0: यह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तह किसे भूख

0: गुण का नाही प्रवेश
1: एक भगवंता
0: तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: अपनो आप आप पतियारा
0: तह कौन कथे कौन सुन हारा
1: मोहो बेअंत उचते उचा
0: नानक आपस को आप पहुँचा
1: जय आप रचयो प्रपंच कार
0: गुण में किन्नो विस्तार
1: आप पुण्य तह पे कहावत
0: ओ नरक को स्वर्ग बन चावत।

0: उतरै चिंद
1: आस अनित त्याग होतरंग
0: संत जना की धूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: साध संग अग्न सागर तरहु
1: हर तन

0: बिंद भगत कै मन विश्राम,
1: कोट अपराध साध संग मिटै,
0: संत कृपा ते जम ते छुटै,
1: जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए,
0: साध शरण नानक ते आए,
1: जिस मन वसै सुनै लाए प्रीत,
0: जिस जन आवै हर प्रभ चीत,
1: जन्म मरण ताका दुख निवारै,
0: दुर्लभ देहे तत्काल उदारै।

0: सोना हाथ होवे असगा
1: सुना दुख पाप का नाश
0: मन की गात कही न जाए जे को कहा पिछा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवें ता प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सधान के देख फिरयो कर जोग जति।

0: करते सही को हमारी
1: सकल प्रजा जने आप सवारी
0: गुण को सब गुण सुख दियो
1: संतरण को बल मोह बात कियो
0: कट के अंतर की जानत
1: भरे बुरे की पीर पहचानत
0: कुंचर सुला
1: सब पर कृपा देश कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी
1: सुख पाए साधन कै सुखी
0: एक की पीर पहचाने
1: काट काट के पट पट की जाना
0: उद कर करा कर तारा
1: प्रजा सत तब

अपने टहलियां दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना, काम क्रोध लोभ अहंकार तो बचाउना, श्रद्धा भावना प्रीत अदब सहित दर घर दी सेवा दे योग कर लेना, आप जी दी कृपा सदका चार पैर रहन सुख भाने अंदर बतीत हुई है, दिन चढ़े अपने भाने अंदर बतीत करवाउना गरीब नवाज, दीवाना दी संपूर्ण तानु मुख रख दे आप जी के हजूर, कड़ा प्रसादी देग हाजिर है दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते सतगुरु जी कृपा करो, दर आई संगत नु निवाज दे हुए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी, हुक्म ते चलन दी मत बुद्ध प्रदान करनी, अगले दीवान सजाउन दी आग्या होवे।

दस मई नू है जी मदर्स डे आ रहा सो आउंदे एतवार भाव हो गया फिर वह तो 11 मई तो लैके 17 मई तक साढ़े पास पंदमान विद्वान से कथाकार भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी ने आके कथा करनी हैगी गुरबाणी की सो संगत नोट कर लो 11 मई तो 17 मई तक 12 मई नू सरहंद की फतेह का दिन है जदों बंदा सिंह बहादुर ने उसनों फतेह किया उस दिन संगरान 15 मई नू जी छोटा घल्लूघारा गुरदासपुर वाला 17 मई नू 25 नू मेमोरियल डे हैगा कि 27 मई तो लैके 31 मई तक साढ़े पास आके कीर्तन करनगे भाई साहब हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। June 4 नू है जी होया सी अटैक दरबार साहब से अकाल तख्त से आप भी चेते रखिए 4 जून नू सारे संसार के अंदर वो दिन मनाया जाना हैगा सोग के तौर पर। 5 मई नू है जी जन्मदिन प्यारे मोहन सिंह जी का। 6 नू है शहीद जी बंदे मान जरनैल बाबा जरनैल सिंह पिंडा वाले की। बाकी सूचनावां मैं छड़ जांदा हुण काफ़ी। तो सिख हैरीटेज नाइट मनाई जा रही है जी 18 जून नू। 18 जून नू ही है शहीद की धन धन गुरु अर्जन देव साहब जी की, वो भी नोट कर लो। तो उस दे संबंध में ही आपने सहज पाठ रखने ने घर च उन्होंने भोग फिर उस 18 जून के लगभग पैणगे। सो कृपा कर सब ने एक बेनती जरूर होर कर लवा कि आप नॉर्थ से साउथ हाल की जो बिल्डिंग है वो उसी उसारी ले प्रोग्राम शुरू किया है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। संगत बड़े प्यार से श्रद्धा नाल उस हिस्सा पा रही ने बहुत सारिया, कोई 5,000 कोई 10,000 कोई 20,000 कोई लख भी दे रहा कोई ज़्यादा भी दे रहा है। सो आप कोशिश करिए अपनी रिस्पंद कट के घट्टो घट उन्ना हिस्सा ही पा लीए ताकि गुरु की बख्श रह सकी। मैं हमेशा ही गुरु की कृपा नाल कहना हूं कि उससे चौगुण करे निहाल। तो गुरु साहब की बाणी का फरमान हैगा नानक साहब सदा दयाल है, भाव उस जिहड़ा संबंध करता उस गुरु होर बख्शा करता रहिंदा है। सो हुण आप जी ने कीर्तन सरण करन की कृपा करनी भाई साहब हरप्रीत सिंह जी ने जथे पासों समा उन्होंने पता है, खालसा स्कूल के बच्चों ने भी आके कीर्तन करना। अज वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

0: हाँ जी चलिए बच्चों शुरू करो जी पते बुलाओ
1: वाहे कृष्ण जी का खालसा वाहे कृष्ण जी की फतेह।

0: पते।
1: श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का, बहुत ही जोश के बच्चा ने शब्द गायन किया। सारे बच्चे सुर दे भी सन, बड़ी वड्डी टीम बच्चों की। सो आ जाओ बच्चे, हम तुम स्टेज तो पेरेंट्स भी थोड़ी हेल्प कर दे उन्होंने। हम अगली क्लास साड़ी प्रोफेसर दलबीर सिंह की क्लास है, उन्होंने बच्चों को कहांगा कि स्टेज पे आन। बच्चों ने इन्होंने शब्द जो गायन करना है, भाई नंद लाल जी का शब्द गुरु गोबिंद सिंह जी के सिफर के विच जो उन्होंने उच्चारण किया, ना सरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, इज़्ज़त ए मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह इज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड डेस्टिट्यूट। भाई साहब ने गुरु साहब नू बहुत ही नेड़े होके देखिया, ते उन्होंने जिन्ने उन्होंने सिफत दिसिया, उन्होंने जिन्नी को महसूस कर सके उन्होंने लिखिया है। गुरु जी की सिफत से अणगिणित हैगी है, कोई भी बंदा उन्होंने डिस्क्राइब नहीं कर सकता। पर उन्होंने इस शब्द के विच 56 बंद हैगे ने इस शब्द के, जिदे विच उन्होंने गुरु महाराज की सिफत की है। आओ असि सारे मिलके बच्चों, तुम सारे बैठना, हले जाना नहीं किसी ने, हले सारे बच्चों बेनती है, टीचर्स प्लीज बच्चों को बैठ इस शब्द सुन के जान गए। दिस इज द लास्ट शब्द, प्लीज बच्चों को सुन के जान की शब्द। बच्चे जो बैठे हैं स्टेज थे, जसलीन कौर, रमनीत कौर, गुरकिरण कौर, तबले के साथ मेरा बच्चा मेहर सिंह। शब्द दरबारी कानड़ा दे विच बच्चे ने गायन करना है, ते ताल है रूपक। गेट क्लोज टू द माइक एवरीबॉडी। हाँ जी, शुरू करो जी, पति बुलाओ।
0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: 14 जून तो 30 अगस्त तक, 14 जून तो 30 अगस्त तक होएगा। हुण जेकर तुहानू कोई भी इनफॉरमेशन चाहिए आ, अज तां टेबल जिहड़ा उह लाइब्रेरी दे विच लगा साडा, तुसीं उत्थे जा के जिहड़े पेरेंट्स आ जा के उत्थों होर इनफॉरमेशन लै सकदे आ। पर अगले 3 संडे असीं इह टेबल जिहड़ा लंगर हाल दे मूहरे लावांगे, असीं अग्गे लाउंदे रहे। पर अज क्योंकि कुछ कु स्टूडेंट रेडी सी, उहनां दा टेस्ट हो रहा उधर, सो जे जो भी किसी नू इनफॉरमेशन की लोड़ आ अज प्लीज लाइब्रेरी स्कूल दे विच लाइब्रेरी दे विच जाके वो इनफॉरमेशन लै सकते हैं। बाकी जिहड़ी डिटेल्स वगैरह वो असीं तुहानू उत्थे तुहानू पेपर भी दे देंगे, पंपलेट बने आ। एक बार फिर तुहाडे सारे मूहरे बेनती है कि अपने बच्चों से भी थोड़ा थोड़ा फोकस ज्यादा करिए कि वह सोहने स्कूलों में सोहनिया यूनिवर्सिटियां जाण। तो इसलिए जिहड़े आ कोर्सेज आ रहे हैं जां SST का टेस्ट आऊगा, हुण असीं PSET का करवा रहे हैं इन्हां गर्मी दीआं छुट्टियां विच, सारे पेरेंट्स नूं प्लीज़ इत्थे फोकस करो, इधर नूं अटेंशन दिओ। जिन्हां दे भी बच्चे 7वीं तों 11वीं तक आ वो जरूर इस कोर्स का पार्ट बनो, आओ तो बच्चे हिस्सा लो, तो यह तुहाडे बच्चे नूं डेफिनेटली वधिया बनाउणगे ते सोहणे स्कूलों विच दाखला लैण लई हैल्प करनगे। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।
1: एक मिनट भाई साहब जी, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। मैं एक बेनती करनी सी, साडे विचों काफ़ी जने शायद एक इत्थों दे बड़े मशहूर अपनी कम्यूनिटी दे मैंबर हन, कंवल रेखी जी, उन्होंने जानते हो शायद, उन्होंने इस एरिए दे विच जो सिख ते इंडियन एंटरप्रेनर्स ने उन्होंने बड़ी हैल्प की है, बड़िया कंपनियां खोलन में मदद की है। तो उन्होंने बारे उन्होंने परिवार ने एक मूवी बनाई है जिहड़ी कि सैन फ्रांसिस्को अगले हफ्ते शनिवार शामी 5 बजे दिखाई जा रही है। उस मूवी बारे जे तुसीं इंट्रस्टिड होवो तो उन्होंने टेबल लगाया होया है लंगर हाल दे विच, ते तुसीं उत्थे जाके उन्हां कोलों इनफॉरमेशन लै सकते हो, तो शामिल होवो। अगर आप उन्होंने, मैं कल उन्होंने एक टॉक अटेंड की सी, उन्होंने तो काफ़ी इंस्पीरेशन मिलती है कि किवें उन्होंने आम इंजीनियर की तरह से जिंदगी शुरू की, तो फिर किवें हिम्मत करके नवे बिजनेस खोले, तो किवें तरक्की की। सो अगर आप इस इंट्रस्टिड हो तो जरूर उन्होंने तो इनफॉरमेशन लै लो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।

0: जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दय बसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दय बसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वडियाई आठ पहर गुण गाई गुरपूरे ते पाई राव प्रभ की अकथ कहानी जन बोल है अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुरपूरे ते जानी प्रभ की अकथ कहानी जन बोले है अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुरपूरे ते जानी
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दे वसाया सुख सागर गुरु पाया ता सहसा सगल मिटा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी कभी उबाच बेनती चौपाई पातशाह दसवीं हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चंदन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवे तुम काबू आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करे सब बैरन को आसंग्रह पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन छत्र आप हाथ दे मुझे उबरे मरण काल का त्रास निवरे पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अर्जो करो राख लिहो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चक्र दस कंसा काल पाए ब्रह्मा बक्तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू कियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए जवन काल सब जगत बनायो आद अंत एक है अवतारा नमस्कार किसी ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शतरंग को परमो बध कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी पे कुंजर अस्तुला
2: सब पर कृपा दृष्टि कर फूला
1: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के एक एक की पीर पछाने कट कट की पट पट की जाने जब उदकरक करा कर तारा पर जाता जब आकर कर कब हूँ तुम मैं मिलत दे जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप तुम सब ही तेर है निरालम निरंकार निरकार निलंब आर अनिल ताका मूल विचारत पेदा जाको केव न पावत ताको कर पाहन अनुमानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीमत नहीं आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो तेती तुमरा लखान के बिर सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुस्वरूपा रंग तयो राव कई पूपा
0: अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हुआ बैठा कहो सिमट पर शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंभो आद जुगाद स्वरूप से अंभो अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तु तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट में आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जह न हर हो ताके ताप तनक मो हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छप सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोकते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व ठोर मोह हो सहाय दुष्ट दोकते ले हो बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व ठोर मोह हो सहाय दुष्ट दोकते ले हो बचाई श्लोक पवन गुरु पाणी पिता दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत चंगी आईया बुरी आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहेगुरु जी का खालसा।

0: अमर सिंह यहाँ पेट ऊपर आपको पहले पीछे गुरु प्यारे साथ संगत जी सारे हाथ जोड़ के फतेह बुलाओ जी।
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: आज असेंबली थोड़ी छोटी होनी है, दो बच्चों के शब्द भी ने, इस करके छेती सारे बैठ जाओ, सारे हाथ जोड़ के अखां बंद करके बैठो जी। सब ने बोलना है जी नाल पिछे।

मूल मंत्र का जाप अज 3 बारी किया है जान बुझ के, क्योंकि 2 आइटम होर ने उन्हें करके हूँ असी बस देह शिवाशवत पढ़ के फिर समाप्ति कर दें। ठीक है, सो आप सारे ने बोलना जी नाल।